पार्थिवास एफएम समय सूचन। यो पार्थिवास एफएम को समय हो, अहिले रात को 8 बजे।

0: お前ね、おじおじおじ。おじかおじやね。ちゃちゃちゃちゃちゃ。
1: प्यार से दे रहे हैं रख लो
0: देख देख देख अरे और ये बाप रे बाप इस स्टाइल तो ब्लास्टिंग मारे लू हो तू चार भी क्या लिखवा ले तू का आए अरे रे ए ए
1: आ जिगर पलट